0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll also be taking calls on your market related queries, but do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444-2331-0481 and 2371-7106, and of course do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह हम आपके फोन कॉल्स पर पूछे गए सवालों को सीधा कार्यक्रम में शामिल करेंगे. आप हमें कॉल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, बस इसका ख्याल करना है. आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित, सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: The benchmark domestic indices register modest weekly gains. US markets wrap up week on negative note. And global crude oil prices jump around 16% this week amid geopolitical concerns.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में इस सप्ताह मामूली बढ़त दर्ज की गई. अमरीकी शेयर बाजार इस सप्ताह घाटे में बंद हुए और भू राजनीतिक चिंताओं के बीच इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, आइए अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह किस तरीके से हमारे घरेलू शेयर सूचकांकों ने प्रदर्शन किया. इस सप्ताह घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली बढ़त देखी गई. बड़ी कंपनियों के उम्मीद से बेहतर परिणामों के बाद कमजोर वैश्विक संकेतों, रुपए में गिरावट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद बाजार में जबरदस्त खरीदारी हुई. इस हफ्ते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.7% बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ 24,334 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार का प्रदर्शन प्रमुख शेयर सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा. इस सप्ताह मिड कैप 100 सूचकांक 1% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.6% नीचे आए. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह रुपया 96 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 96.28 रुपए पर बंद हुआ. जितेंद्र जुड़ रहे हैं श्रोताओं हमारे साथ जयपुर से. बहुत
3: बहुत
1: अभिनंदन.
3: हाँ सर, ये मैं किसी के बिहाफ से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो निफ्टी 50 या 100 तक भी पकड़ लीजिए, मैं बोला पूछ के ही बता दूंगा कि वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेस करना चाह रहा है शेयर, उसका डीमेट अकाउंट है, तो कौन सा सेक्टर जैसे वो अभी स्टार्ट करे इंस्टॉलमेंट लेने के लिए? 50 तक भी चलेगा निफ्टी 50 या 100?
2: अच्छा, जितेंद्र जी का शायद मतलब इंस्टॉलमेंट से SIP फॉर्मेट है या स्टैगर्ड जिसको परचेस कहते हैं. मुझे लगा है जितेंद्र जी, देखिए पहली बात तो कंपनी की चॉइस बहुत अच्छी होनी चाहिए. सेक्टर बताने से पहले मैं आपको ये सावधान करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छा

0: सेक्टर में भी बैड फिशेस होती हैं, उसमें ऐसे ही कंपनीज आ जाती हैं। तो चार पांच सेक्टर्स का मैं नाम ले लेता हूं, आप उसको ध्यान में रखिए, डिफेंस को ध्यान में रखिए, एफएमसीजी को ध्यान में रखिए, और आप ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कंपनीज ऑटोमोबाइल कंपनी ज्यादा बना रहे हैं आप उनको ध्यान में रख सकते हैं, और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े जो शेयर्स हैं उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो स्पेस टेक में काम कर रही हैं, उन पे आप ध्यान रख सकते हैं। चार पांच सेक्टर्स हैं, पर मैं दोहराता हूं कि कंपनी का जो चयन है वो बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स आपको पूरी तरह से स्टडी करने चाहिए, उनका प्रॉफिट, उनका ऑर्डर बुक, उनके प्रमोटर्स कैसे हैं, उनमें कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही है, उनका भविष्य कैसा है, ये सब चीज़ें देख के तब आपके आपके फ्रेंड जिनके बिहाफ पे आप पूछ रहे हैं आप उनको सारी बातें बताइएगा, कोई बात मिस मत करिएगा वरना संदेश अधूरा रह जाएगा।
1: Our next caller is V.R. Nath from Delhi. Mr. Nath.
2: जी
1: जी सर, जी सवाल पूछा आपने।
2: हेलो
1: जी,
2: मुझे पूछना यह है कि जो शेयर बेचते हैं या खरीदते हैं
1: जी,
2: तो उसका जो प्राइस सेल प्राइस और जो ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो होती है
1: जी,
2: अबाउट 1% को कहाँ दिखाया जाए,
0: कहाँ दिखाया जाए? आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वी आर नाथ जी जानते हैं, जानना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ दिखा, क्योंकि जब आप इनकी अकाउंटिंग करते हैं, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, क्योंकि होता क्या है प्राची और निशित के, जब जो लोग इसमें रेगुलर सेल परचेज करते हैं तो वो कैपिटल गेन की जगह बिजनेस इनकम होता है, उसको हम कहते हैं होल्डिंग शेयर्स इन स्टॉक एंड ट्रेड। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें अलग से एक खाता खोला जाता है जिसमें ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी दिखाई जाती है, बाकी ये आपके शेयर्स की प्राइस का हिस्सा ही बनता है। अगर आप इसको आयकर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, क्योंकि आयकर की डेट चल रही है, मैं गेस कर रहा हूं कि शायद नाथ साहब वो पूछना चाह रहे हो, तो इसको आप अपनी परचेज प्राइस में से ऐड करके या सेल में से घटा के आप अपना नेट कैपिटल गेन निकाल सकते हैं।
3: दिल्ली से हमारे साथ राजीव जुड़ रहे हैं। राजीव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार मार्केट मंत्रा जी, ये जैसे मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लगभग 50% आईटी सेक्टर में लगा रखा है, तो इस महीने रुकना चाहिए कि सेल कर दूं सर, कुछ हल्का फुल्का प्रॉफिट है?
0: राजीव जी का बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आईटी सेक्टर निरंतर चर्चा में प्राची और निश्चित बना हुआ है, आप देख ही रहे हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी एआई से खतरा, कभी लेऑफ्स का खतरा, कभी अमेरिका में मंदी का खतरा, कभी दुनिया में मंदी का खतरा, बहुत रोलर कोस्टर राइड आईटी सेक्टर की आ रही है। तो राजीव जी मैं सलाह दूंगा, आपका जो विचार है अच्छा है, अगर आप अभी मुनाफे में है तो बुरा विचार नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और प्रॉफिट बुक करके और इसको नए सिरे से आप कुछ और सेक्टर्स का भी चयन कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में तो लगा ही सकते हैं, पर मैंने अभी कुछ सेक्टर्स का नाम लिया, एफएमसीजी है, डिफेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑटोमोबाइल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फोकस्ड है उन पे लगा सकते हैं। तो आप इसको बड़ा हिस्सा एक ही सेक्टर में तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए राजीव, ये भी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। तो आपने काफी बड़ा हिस्सा एक ही सेक्टर में लगा रखा, और अगर आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट है और ऐसे माहौल में प्रॉफिट है तो मुझे लग रहा है बुरा आइडिया नहीं होगा आप प्रॉफिट उस पर बुक करके, और नए सिरे से मार्केट में जब जब करेक्शन आए स्टैगर्ड फॉर्म में, जिसको हम SIP कहते हैं, SIP मतलब सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, उस तरीके से इसको लगाएं।
1: नेक्स्ट कॉलर इज अमित झा फ्रॉम दिल्ली। अमित
5: नमस्कार सर।
1: नमस्कार
5: सभी को। नमस्कार सर, कोहली सर, प्रश्न मेरा मिलता जुलता ये सारे श्रोता ने पूछ लिया, लेकिन थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूँ सर
1: जी,
5: कि जैसे आपने कहा कि सेक्टर की कंपनी आपको देखना चाहिए, उनके फंडामेंटल क्या है, उनके ऑर्डर्स बुक क्या है, उनके पोर्टफोलियो सॉरी कैश फ्लो क्या है, जो भी है अच्छा होती है। तो सर मैंने तो अभी रिसेंटली 2 सालों में देखा है कि एक आईटी की आप चर्चा कर ही रहे हो, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी सारे कुछ ठीक थे, फंडामेंटल भी ठीक थे, मैनेजमेंट भी ठीक था, बैंकिंग सेक्टर की लीडर कंपनी, नाम नहीं लूंगा जैसे आप कार्यक्रम नहीं लेना होता, सेक्टर की बैंक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, टॉप लीडर कंपनी सर, और अचानक से उसमें ऐसी कोई न्यूज आ जाती है और स्टॉक एकदम से गिरने लगता है सर, और 30-40% टूट जाती है, तो अब उस दौरान हम कौन सा फंडामेंटल देखें? धन्यवाद सर।
0: बहुत अच्छा सवाल अमित ने किया है निश्चित प्राची, क्योंकि ये अक्सर निवेशकों को ये रहता है कि हमने सब फंडामेंटल्स चेक किए, सब कुछ अच्छा था, ऑर्डर बुक अच्छी थी, बॉटम लाइंस अच्छी थी, टॉप लाइंस, आप देखिए न्यूज पर तो अमित किसी का कंट्रोल नहीं है,
3: बिल्कुल,
0: अगर कोई ऐसी खबर कंपनी से कोई ऐसी खबर निकल के आती है उनके बारे में, कोई आक्षेप हो जाता है, कोई उनके मैनेजमेंट से संबंधित कई बार कोई खामी निकल आती है, इस पर तो देखिए किसी तो देखिए शेयर मार्केट में जो निवेश होता है अमित, उसमें जोखिम तो भरा होता है, ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ी, यही जोखिम होते हैं कि आपने सब कुछ देखा फिर भी 30-40%

0: पर अगर कोई खबर बहुत बुरी नहीं थी अमित तो वो रिकवर भी कर जाता है। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहूंगा, बहुत ही बुरी खबर आ गई क्योंकि हम अब देखिए स्पेसिफिक्स तो डिस्कस करते नहीं है, या तो मुझे कंपनी का हम नाम लेते होते तो हम देखते क्या खबर आई है, क्यों करेक्शन आई, तो ये सब हम नहीं करते। तो आपको मैं जनरल तौर पर बता देता हूं कि अगर कोई छोटी मोटी बात है तो शेयर मार्केट में एक अच्छी बात यह है कि वो भुलाती भी बहुत जल्दी है, वो शॉर्ट मेमोरी होती है, भुला के आगे चल पड़ते हैं। देखिए ना पिछले सालों में कितनी घटनाएं घटी आज आपको याद भी नहीं होंगी। तो इसलिए अगर कोई बड़ी चीज नहीं है तो आप घबराए नहीं, पैनिक ना करें, वो रिकवर कर जाएगा। और ये जोखिम तो आपको साथ में हमेशा ही रहेगा क्योंकि खबरों पे हम इस समय एक खबर के प्लेटफॉर्म पे हैं, आकाशवाणी पर हैं, यहां से खबरों की ज्यादा चर्चा होती है। तो हमसे अच्छा मुझे लगता है हमारे जो माननीय एंकर, इनसे अच्छा कौन बता सकता है कि खबर कब क्या आ जाए, इसको कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता अमित।
1: And moving on to the U.S. markets, major U.S. indices ended lower yesterday and posted weekly losses dragged by technology shares. The Nasdaq Composite Index shed 1.4%, S&P 500 dipped 1%, and the Dow Jones Industrial Average slipped around 0.8%. For the week, the Nasdaq slid 2.9%, the S&P 500 declined by 1.6%, while the Dow fell 0.9%.
2: And Kolkata se hamare saath Animesh jud rahe hain. Animesh ji, karyakram mein aapka abhinandan. कृपया अपना सवाल।
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र।
2: गुड इवनिंग,
3: दिस अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता।
0: यस अनिमेश
3: सर, आई एम सुपर एनुएटेड मैन, शुड आई गो इन फॉर एनी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड फॉर पेंशन स्कीम, वुड इट बी रिस्क फ्री और आई शुड फॉलो द जनरल रूल एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? थैंक यू सर।
0: Animesh, I think the best way for you should be that since you're retired and you know, generally at the age of retirement, we do not recommend being very adventurous with your investments, you know. So you should not be going very aggressive. So investing directly in stock markets, unless you have complete knowledge and you are very, very research based, or you are under guidance of a SEBI registered finance professional, then maybe yes. But otherwise, if you use your own judgments and you've got limited time at hand, limited aptitude at hand, then I would suggest you take up the mutual fund route. And incidentally, on Sundays, Akashwani and this very show, Market Mantra, a mutual fund expert comes which guides you on, you know, what kind of investments and what's the duration of investment.
2: Bilkul.
0: So direct market depends on how much access you have to the things I mentioned. But mutual funds, yes, you can try because there you can exit anytime. And you can keep a watch on how the fund has been performing.
1: Right. And ICICI Bank today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The bank's standalone net profit rose around 16% to 14,804.5 crore rupees on an annual basis. The bank's net interest income for the quarter grew by 12.7% to 24,384 crore rupees. The ICICI Bank's net NPA ratio fell by 6 basis points to 0.35% on an annual basis.
2: एक्सिस बैंक ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अपने वित्तीय परिणाम साझा किए हैं। बैंक का शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर लगभग 23% बढ़कर 7,114 करोड़ रुपए हो गया है। इस तिमाही के लिए बैंक की शुद्ध ब्याज आय 8% से बढ़कर 14,646 करोड़ रुपए हो गई है। एक्सिस बैंक का कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात वार्षिक आधार पर 6 आधार अंक लुढ़ककर 0.39% रह गया है। और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। केशव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
4: हेलो, नमस्कार जी।
2: नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: सूरज जी को नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे अभी जो विश्व में तेल की प्रॉब्लम चल रही है, तो हम हिंदुस्तान में टू व्हीलर अगर बैटरी वाला लेने जाते हैं तो टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसका कितना प्रभाव हो रहा है? और सुनने में ये भी आया कि चाइना की तरफ से जो बैटरियां बनती थी तो बैटरियां उन्होंने कंट्रोल कर दी है और पाबंदी लगा दी है, तो आने वाले टाइम में क्या ये बैटरी वाली गाड़ियों में भी क्या प्रॉब्लम आने के चांसेस है?
0: नहीं केशव, बैटरी में आगे इतनी प्रॉब्लम होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बहुत सारी भारत में भी अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो छोटी छोटी कंपनीज भी अब टू व्हीलर्स बना रही हैं। हम लोग इस समय दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, नोएडा में मेरी जानकारी में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स अब टू व्हीलर्स के खुल रहे हैं। तो ये लोग लिथियम बैटरीज हम लोग वैसे तो हम चाइना से भी मंगाते हैं, पर अब भारत में भी इस पे बहुत काम चल रहा है। मुझे लगता है भविष्य का जो ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर होने वाला है वो बैटरी ओरिएंटेड होने वाला है। और जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल और क्रूड को लेके अभी चिंताएं हैं दुनिया में, जो परिस्थिति है, नहीं

0: नहीं लगता है केशव के आने, बल्कि आने वाले समय में अभी जो दिक्कतें हैं वो उल्टा रिजॉल्व हो जाएंगी, वो उनका निस्तारण हो जाएगा और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप जो बैटरी के स्कूटर या कार लेना चाहते हैं आप ले। अब तो सरकार भी उसको बढ़ावा दे रही है। आप अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार तो उस पर इंसेंटिव भी दे रही है, टू व्हीलर्स पे भी है, कारों पर भी। या पुरानी कार लेकर आते हैं उसको आप डिस्कार्ड करते हैं तो उस पर भी इंसेंटिव है। तो ये आपको जो आ रही है वो टेम्परेरी होगी, तो मुझे लग रहा है आगे आपको ये नहीं आएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है।
1: Right, and our next caller is Gopal from Mumbai. Gopal. Gopal, can you hear us? All right. In the meanwhile, HDFC Bank as well today reported its financial results for Q1 FY27. The bank's standalone net profit rose 5% to around 19,060 crore rupees on an annual basis. The bank's net interest income for the quarter grew by 6.7% to 33,530 crore.

0: financial results for Q1 FY27, the bank's standalone net profit rose 5% to around 19,060 crore rupees on an annual basis. The bank's net interest income for the quarter grew by 6.7% to 33,530 crore rupees. HDFC Bank's net non-performing asset ratio fell by 6 basis points to 0.41% on an annual basis.
1: और संजीव जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से. संजीव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्कार सभी जनों को. मेरे तरफ से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम 1 लाख रुपए का शेयर लेते हैं और उसे 1,20,000 में बेचते हैं, तो हमारे जो प्रॉफिट पे ही टैक्स लगेगा या फिर 1 लाख पे लगेगा पूरे 1.25 लाख पे?
3: संजीव, अगर आप मात्र 1 लाख का खरीदते हैं और 1,20,000 का बेच देते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि 1,25,000 तक की इनकम टैक्स में इक्विटी शेयर्स बेचने पर एक एग्जेम्पशन है, एक विशेष छूट दी हुई है. तो अगर आप इसको एक उदाहरण के तौर पर पूछ रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि टैक्स तो खाली 20,000 पर लगेगा, और अगर आपने शॉर्ट टर्म बेचा है, लॉन्ग टर्म बेचा है, तो 12.5% लगेगा. आपने शॉर्ट टर्म बेचा है तो उस पर 20% लगेगा. परंतु अगर खाली एक ही ट्रांजैक्शन आपका है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, तो 1,25,000 तक, जब तक आपका ये पूरा मुनाफा, ये सेल नहीं, पूरा मुनाफा आपका 1,25,000 तक का, इसमें से माफ होता है. तो अगर आपकी खाली ट्रांजेक्शन है, तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके 20,000 पे जीरो टैक्स लगेगा. देखिए, मैंने एक कदम और आगे बढ़ा के आपको बता दिया. जी,
0: एंड कोटक महिंद्रा बैंक स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट रोज अराउंड 26% ऑन एन एनुअल बेसिस टू 4,123 crore rupees इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल. द बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर द क्वार्टर ग्रू बाय 9% टू 7,928 crore rupees. Kotak Mahindra Bank's net NPA ratio fell by 6 basis points to 0.27% on an annual basis.
1: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कल मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही का परिणाम जारी किया है. कंपनी की आय सालाना आधार पर 25% से अधिक बढ़कर करीब 3,11,850 करोड़ रुपया हो गई है. हर तिमाही के नतीजों के आधार पर ये आय 4.3% बढ़ी है. कंपनी का शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 22.4% से घटकर 20,946 करोड़ रुपया रह गया है. और गोपाल मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. अपना सवाल
4: जी, नमस्कार मंदर टीम को.
1: नमस्कार,
4: मेरे दो सवाल है. ये जो RBI ने इंटरेस्ट नहीं बढ़ाई, क्या उसकी मजबूरी थी क्या? जबकि महंगाई तो कमर तोड़ गई है, फूड इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गई है, उसकी मजबूरी थी? पहला सवाल ये है, नहीं बढ़ाने का इंटरेस्ट. दूसरा सवाल ये है, फ्राइडे को आप देखिए इंडेक्स चली इतनी 1000 पॉइंट BSE और 275 NSE, एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 3000 डिक्लाइन था, 1000 एडवांस. पिछले 2 साल से इक्विटी मार्केट की बहुत हालत खराब है, कई इक्विटीज तो वेंटिलेटर पे पहुंच गए हैं. तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? SEBI जिम्मेदार है, BSE NSE जिम्मेदार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, या प्रमोटर जिम्मेदार है? हालत
3: गोपाल जी, आपका पहला सवाल RBI रिपो रेट और इन्फ्लेशन से संबंधित है. अभी इन्फ्लेशन देखिए, RBI का जो टॉलरेंस बैंड है वो 2% से 6% का होता है. तो अभी जो CPI के नंबर्स आए वो 4.38 के आए. अगर लगातार महंगाई, CPI जिसको हम कहते हैं, वो लगातार ऊपर बनी रहती है, तो फिर अब RBI कहीं, इसको हम हॉकिश स्टैंस कहते हैं, RBI अपना हॉकिश स्टैंस लेगा. पर अभी देखिए, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है गोपाल जी, आपको ध्यान रखना होगा कि वो GDP की रफ्तार को लगाम देता है. तो RBI जब तक नहीं बढ़ाता, जब तक उसको पूरी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यकीन नहीं हो जाता कि अब महंगाई को वाकई रोकना है, तो अगर ये लगातार आगे बढ़ता रहा तो RBI को हो सकता है RBI इस पर आगने वाली MPCs में कॉल ले. दूसरा आपने पूछा एडवांस डिक्लाइन, ये दो साल से हुआ है. ना NSE जिम्मेवार है, ना BSE जिम्मेवार है, ना भारत सरकार जिम्मेवार है, ना SEBI जिम्मेवार है, ना कंपनी जिम्मेवार है. ये परिस्थितियां इस प्रकार की हैं. मार्केट देखिए, मार्केट डिमांड और सप्लाई पर चलता है गोपाल जी. आप भी खरीदते होंगे, बेचते होंगे, लोग खरीदते बेचते हैं. अगर BSE NSE या भारत सरकार जिम्मेवार होने लग जाए, तो फिर तो मार्केट को मार्केट नहीं कहेंगे, फिर तो उसको एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म कहेंगे. तो मार्केट को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है. जैसे जैसे कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं गोपाल जी, आपने देखा होगा उनके बहुत अच्छे. आप देखिए, अभी जो आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियो मुझे बताई, उसमें बैंकिंग के आप देखिए क्या रिटर्न उस दिन क्या उछला है. तो मुझे लगता है मार्केट में सेक्टर रोटेशन होती रहती है, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती रहती हैं, डिमांड सप्लाई बढ़ती रहती है, कंपनीज के रिजल्ट्स आते रहते हैं. मैं अगर मार्केट के उठने गिरने के कारण बताऊं, तो मुझे पूरा का पूरा मार्केट मंत्र का आधा घंटा सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने में लग जाएगा. जी
1: आगे बढ़ते हैं और मुंबई

0: हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं. रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
1: हेलो, गुड इवनिंग
0: जी.
1: मेरा सवाल है कि अमेरिका और ईरान का वॉर तो अभी कुछ अनिश्चितता से भरा हुआ है. कभी हॉर्मुज खुली होती है, कभी नहीं होती है. तो ऐसे हालत में जो ऑयल कंपनीज है
2: जी,
1: इंडिया में जो है उसका जो ऑयल कंपनीज के शेयर लेना कितना अच्छा रहेगा, वो लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और आईटी सेक्टर में उसका क्या फर्क पड़ सकता है.
2: देखिए, ऑयल कंपनीज के शेयर्स अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कुछ दिन के लिए शायद दूर रहने की सलाह दूं, क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव क्रूड की प्राइसेस में आप देख ही रहे हैं, बना हुआ है. पिछले कई ऊपर गया, फिर उसके बाद 71-72 डॉलर आया, फिर 85-86 डॉलर चल गया. अभी बारबल मंदेप जो सऊदी अरेबिया के पास है, उसको कुछ बंद होने की खबरें आ रही हैं. हो सकता है अगर बंद हो जाए तो क्रूड और ऊपर जाए. तो मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आप मुझे बहुत सीनियर प्रश्नकर्ता हैं, आप बहुत पुराने वेटरन हैं, तो आपके लिए मुझे लग रहा है ऑयल कंपनी से आप दूर रह सकते हैं. आईटी कंपनीज भी काफी उतार चढ़ाव, अभी हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि आईटी कंपनीज में, पर आईटी कंपनीज में भी आप सिलेक्टेड कंपनीज में जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है, जिनका एआई थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जिनकी एआई एप्लीकेशंस और एआई टूल्स जिस पे काम कर रहे हैं, जिसकी एआई रिसर्च अच्छी है, उन पर आप सिलेक्टिवली आप उसको चूज कर सकते हैं. थोड़ा सा आईटी सेक्टर ने काफी उतार चढ़ाव दिखाया है, अभी हम थोड़ी देर पहले उसकी काफी डिटेल में रत्नाकर जी चर्चा कर चुके हैं.
3: नेक्स्ट कॉलर इज आरपी उपाध्याय फ्रॉम दिल्ली.
4: नमस्कार कोल साहब.
2: नमस्कार उपाध्याय जी.
4: कोल साहब, एक एडवाइस लेनी थी कि मैं 78 इयर्स सीनियर सिटीजन हूँ, तो अब तक मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता था
2: जी.
4: इस साल 12 लाख के उससे मेरे पे टैक्स नहीं लग रहा, तो मुझे भरना चाहिए या नहीं.
2: अच्छा, देखिए उपाध्याय जी, उपाध्याय जी ने शायद अपना रेडियो सेट ऑन किया हुआ था. अगर 12 लाख की वजह से आपका इनकम एग्जेम्प्ट हो रहा है, इसको पुराने एक्ट में 87A कहते थे, शायद उपाध्याय जी को वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे. अगर उसकी वजह से हो रहा है तो फिर आपको भरना पड़ेगा. अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे हैं, जैसे अब नए रिजीम में 4 लाख है, पुराने रिजीम में 2.5 लाख है, जिस व्यक्ति की बेसिक एग्जेम्पशन से नीचे की इनकम है उसको भरना जरूरी नहीं है. परंतु अगर इस 87A के रिबेट की वजह से आपकी इनकम कम होती है तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए. बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको. 78 साल के हैं प्राची और निशित, और देखिए अभी भी वो कितने लॉ अवॉइडिंग है, उनको पूरी इस बात की चिंता है कि मेरी भले ही मेरा टैक्स नहीं है पर मुझे रिटर्न भरना चाहिए. मुझे लग रहा है बहुत सारे युवाओं को उपाध्याय जी से सीखना चाहिए.
3: राइट.
0: और दिल्ली से हमारे साथ मुकेश जुड़ रहे हैं. मुकेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: गुड इवनिंग सर. मेरा सवाल है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स हैं और ग्रीन एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं
2: जी,
5: उनमें जैसा कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर की जो कंडीशन रेगुलर बन रही है, जिसकी वजह से पावर के क्राइसिस हो रहे हैं
2: जी,
5: तो उस चीज को देखते हुए अभी इसमें जो इस रेट पे इन्वेस्टमेंट करा जाए, तो मतलब एक क्वार्टर रुकने में मतलब क्या प्रॉफिटेबल होंगे वो. और दूसरा है सर, मेरा जो बैंकिंग सेक्टर्स के जो टॉप लीडर्स बैंक हैं, उनमें क्या मतलब अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए.
2: देखिए, पहले मैं आपके मुकेश जी बाद वाले सवाल का लेता हूं कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि बैंकिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं. अभी हमारे माननीय एंकर्स ने कुछ बैंकों के रिजल्ट्स भी पढ़े
0: और
2: बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर भारत का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो आप सिलेक्टिव बेसिस पे, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे निजी क्षेत्र के बैंक हो, आप उनको लंबे वक्त के लिए रख सकते हैं. आपका इनका पहला सवाल था कि रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के शेयर्स के लिए क्या एक क्वार्टर वेट करना चाहिए. मुझे लगता है मुकेश के, अगर अच्छी कंपनी आपको मिल रही है ग्रीन एनर्जी में, तो उसमें जितनी जल्दी आप उस बस में सवार हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लंबे वक्त के लिए यही फ्यूचर है. जैसा आप बात कर रहे हैं अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, अदरवाइज भी फॉसिल फ्यूल से हटके दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहती है. तो मुझे लग रहा है कि आपको, अगर आपके पास फंड्स हैं और आप पूरी रिसर्च कर रहे हैं, तो आप इसको जल्दी भी ले लेंगे. परंतु कंपनी का चयन जो है वो बहुत ही चिंतन करके होना चाहिए.
0: बिल्कुल. दिल्ली से हमारे साथ संतोष जुड़ रहे हैं. संतोष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
6: हेलो
0: जी, अपना सवाल पूछिए.
6: हाँ नमस्कार कोहली जी.
2: नमस्कार संतोष जी.
6: हाँ, मैं आपका फैन हूँ, मैं दिल्ली आपकी वीडियो भी देखता हूँ.
2: प्लेजर सर.
6: मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए नहीं, पहला क्वेश्चन ये है. दूसरा ये है कि मार्केट में इस साल में कैसा रहेगा, दिसंबर तक मार्केट कैसा रहेगा निफ्टी.
2: चलिए संतोष जी, गोल्ड की पहले बात कर लेते हैं. गोल्ड में मुझे लग रहा है इस समय गोल्ड 4000 डॉलर के आसपास है. भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 1,40,000-1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच में घूम रहा है.

0: जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, मैं ये निश्चित और प्राची को भी जानकारी उनके लिए भी शायद सबके लिए काम की है, तो कि एचएसबीसी है, मॉर्गन स्टैनली है, जेपी, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज जो इसको ट्रैक करती हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, उन सबका कहना यह है कि वो सोना लंबे वक्त के लिए बहुत ही लाभदायक रह सकता है, परंतु शॉर्ट टर्म में क्योंकि ये जो क्राइसिस चल रही है, डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड्स है, इनकी वजह से उतार चढ़ाव जो आपको लगातार देख, हो सकता है यहां से और नीचे भी जाए, तो इसलिए लोगों को सलाह, ये शायद मैं होता तो ये करता कि मैं थोड़ा थोड़ा करके जब जब करेक्शन आती तो लेती। बाकी निवेश की सलाह तो जैसे हम शुरू में हमारे माननीय एंकर पढ़ते हैं कि आपको किसी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल से पूछना चाहिए, हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट, आपने पूछा कैसी रहेगी, मार्केट इज एनीबडीज गेस। युद्ध पे नजर रखते हैं, देखिए सारी नजर गड़ा के रखिए वेस्ट एशिया पे, वहां से जो खबरें आती हैं उसके आधार पर मार्केट ऐसे नाच रही है जैसे सपेरे के आगे जो है बीन बजाता है तो सांप नाचता है, इस तरीके से नाच रही है जी।
1: राइट, एंड इंडिया'स फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अंडर मिशन Agaman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12:05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Sharaji, how do you see this? This is a really remarkable an achievement.
0: Well, this is indeed a big leap for the Indian space tech industry, because private startups, we've been talking for a very long time, and I think a private rocket being launched in India for the first time, I think this is a huge achievement, I would say, and this is very close to our Prime Minister's heart as well, because he wanted these space startups to come, which has so far been the domain of the government. I would say very, very laudable effort.
1: Right, and moving on to oil, the global crude oil prices rose around 16% this week. The surge was driven by an escalation in fighting between the U.S. and Iran as both sides traded retaliatory strikes. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude September futures surged 15.9% to settle at $88.10 per barrel. West Texas Intermediate crude August futures jumped 15.5% to end at $82.49 per barrel. And meanwhile, we are joined in by Satish from Delhi. Satish, jaldi sawal puchhe.
2: Sir, my question is, in this new tax regime, after 12 lakhs threshold limit, this housing loan interest and housing loan installment is not deductible.
0: Satish ji, both are not deductible because new tax regime has been made in a manner where deductions have been done away with. So the Section 24 deduction, which used to be there for interest, and under Section 80C for principal repayment, unfortunately in the new regime they are both not eligible. But new regime otherwise is very attractive, which I'm sure you must be ending up with lesser tax because of new regime. I would suggest you should try calculating with both the regimes, and whichever is beneficial you can choose that.
3: शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच प्राची, थैंक यू सो मच निशित,
1: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी। एंड बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रजिस्टर मॉडेस्ट वीकली गेन्स, US मार्केट्स रैप अप वीक ऑन अ नेगेटिव नोट, and global crude oil prices jump around 16% this week amid geopolitical concerns. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: இதுவரை திரைகானம் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग

0: सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचान नविदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राद रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसद के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देशभर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे DigiLocker परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। जाने माने उद्योगपति रविकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी पुस्तक लीडिंग फ्रॉम द बैक टू अचीव इम्पॉसिबल की एक प्रति भी भेंट की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards yesterday in New Delhi, Chairman of Jury Feature Film, Jayaraj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahma Yugam and Chandu Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370. Chairman of Jury Non-Feature Film, Asim Kumar Sinha said, Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the best.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भी

0: आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। मणिपुर में 6 नगा नागरिकों की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर लगातार चलाए गए अभियान के बाद ये गिरफ्तारियां की गई। संदिग्धों से अभी पूछताछ की जा रही है जिससे मामले से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। अधिकारियों ने पीड़ितों को न्याय दिलाने और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की भविष्यवाणी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अब तक श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान 3,70,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस वर्ष की यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन आज रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Mehvash Fatima. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards yesterday in New Delhi, Chairman of Jury Feature Film Jay Raj said Mammootty and Karthik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahma Yugam and Chandu Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370. Chairman of Jury Non-Feature Film Asim Kumar Sinha said Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Featuring Film Award. Best Short Film is Humsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book Nani Ruvude, Nimagagi, Nadi Ruvude, Nanagagi Kannada Cinemada, Thatva Mattu Rajakiya. Lok Sabha Speaker Om Birla has given approval for a separate seating in the House for the 20 rebel TMC MPs who have joined Nationalist Citizens Party of India, NCPI. Mr. Birla also gave his approval to the merger of 6 Shiv Sena UBT MPs with the Shiv Sena led by Maharashtra Deputy Chief Minister

0: நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சிகள் இதுவரை சாரதா, தாயை காத்த தனையன், பார்த்தால் பசி தீரும் ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சக்தி சிங். बहत्तरवीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन

0: में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे DigiLocker परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी और उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस वर्ष 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस वर्ष की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% छात्र छात्राएँ उत्तीर्ण हुए हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की भविष्यवाणी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्ते को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। अब तक इस यात्रा के दौरान 370,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस वर्ष की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। खेल खबरों में फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards yesterday in New Delhi, Chairman of Jury Feature Film Jai Raj said, Mammootty and Karthik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahm Yugam and Chandu Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370. Chairman of Jury Non-Feature Film Asim Kumar Sinha said, Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Featuring Film Award. Best Short Film is Hum Safar in Marathi. He said, Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannad book Nani Ruvude Nemagagi Nadi Ruvude Nanagagi Kannada Cinemada Thatvamattu Rajakiya. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of the parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence on Monday and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislation are scheduled to be taken up for discussion and passage. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal yesterday addressed the India-Estonia Business Forum in Tallinn during his visit to Estonia, calling for deeper collaboration in trade, investment, innovation and technology. The forum brought together senior government representatives, industry leaders and business delegations from both countries to explore new avenues for strengthening bilateral economic cooperation. In his address, the minister highlighted India's remarkable economic transformation over the past 2 decades and underscored its emergence as one of the world's fastest growing major economies. The Central Board of

0: நிறைவு பெற்றது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास को और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं अभय जोधपुरकर और विकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कड़ू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्रात रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी है। इन 6 सांसदों के लिए विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाए गए 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई। उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस वर्ष 15 मई से 21 मई तक हुई। CBSE ने बताया कि इस वर्ष की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% छात्र छात्राएँ उत्तीर्ण हुए हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की चेतावनी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा एक बार फिर से शुरू की जाएगी। इस वर्ष यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இதுவரை 100.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் பண்டிட் பீம்சிங் ஜோஷி அவர்களின் பஜன்ஸ் மற்றும் பாட்டு கேட்டீர்கள். நிறைவு பெற்றது இனிய ராகம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் நெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சக்தி சிங். बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हैं। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने ओएमआर शीट की जांच के संबंध में छात्रों और अभिभावकों के लिए एक सख्त परामर्श जारी किया है। एजेंसी ने कहा कि हाल ही में समीक्षा के लिए जमा की गई कई ओएमआर शीट नकली या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनाई पाई गई, जिसके कारण सभी शिकायतों की बारीकी से निगरानी की जा रही है। एनटीए ने कहा कि वह हर शिकायत की गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि उसने चेतावनी दी कि नकली या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर शिकायत करने वालों को गंभीर कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसी ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि सरकार का इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम E20 भारत की सबसे बड़ी जननीतिक सफलताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ी है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। E20 से विदेश से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम हुई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर रोक दी गई है।

एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की चेतावनी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। इस समय ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने फ्रांस पर 4-3 से बढ़त बना रखी है। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन आज रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। आज फाइनल में सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கி சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून सत्र कल से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एनटीए के अनुसार हाल के दिनों में जाँच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जाँच की जा रही है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा परिणाम को चुनौती देने के लिए फर्जी दस्तावेज या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट का इस्तेमाल करना गलत है। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित करते हैं। विद्यार्थी अपने नतीजे डिजीलॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार सीबीएसई ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी और उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस साल 15 मई से 21 मई तक हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, फिल्म मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके तहत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि सरकार का इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम E20 भारत की सबसे बड़ी जननैतिक सफलताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ी है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। E20 से विदेशों से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम हुई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया।